आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देना।
1: अरे हे सूरदास का औलाद, तो क्या सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा आगे आ गया।
2: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
1: अरे हाई देखो ये कालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
0: गोविंदा,
1: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
0: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
1: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
1: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
0: गोविंदा,
1: और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का अड्डा बंद कर दे।
3: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
1: बंद ठहरा करो। अब बंद, हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
4: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
1: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहते हैं, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते का पिया जाते।
5: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
5: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: दो पड़ोसियों से, झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, पर अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र भर

ये कहानी नहीं है रानी, अरे प्यार है प्यार। क्या प्यार कागज पे लिखी कहानी नहीं, जो लिखे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही थू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं तो

पाका नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

काटूंगा वही, मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी मदद कर अल्लाह, मैं बुद्धि को छोड़ूंगा नहीं मैं अल्लाह।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जा। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखा तो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
2: बिंदिया है।
0: माथे पे?
2: बिंदिया है।
0: तो बालों में?
2: गजरा है।
0: आँखों में?
2: गजरा है।
0: ओहो।

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ये लीजिए।
0: मेरे लिए?
1: जी, आपकी नजर।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: में।
1: ये बात है, कहीं नजर न लगा दीजिए।
0: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
1: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

0: मोनिका,
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: हाय, हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दीवाने दीवानी हो। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अमन, आ चुका हूं लेकर आज 90s एंड न्यू स्पेशल के ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम। और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी ने इतने प्यारे प्यारे गाने की फरमाइश किया है, इसलिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन मेरे पसंद के पहले गाने एंजॉय कीजिए, आते ही इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

जी जी बिल्कुल, ख्वाबों की ही मलिका हो मेरी, और मेरे लिए तो जन्नत की हूर भी हो, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए तुम ही तो हो। वैसे मेरे लिए मतलब बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत दोस्तों का वेलकम करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह है सरफराज जी, जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से, बहुत बहुत वेलकम है। वालेकुम असलाम भाईजान जी। जी बिल्कुल, और दिगंबर जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है दिगंबर जी आपका भी। और राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से, तो वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ गजानंद सुलकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम आपका भी वेलकम है। और बीके पंत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बीके पंत जी। और सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं सरायकेला झारखंड से, तो बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं हम। साथ ही साथ जुड़ने वाले हैं हमारे प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। आगरा से सर्वेश भगत जी हैं, वेलकम है आपका भी। प्रकाश धोने जी आपका भी मैं वेलकम करना चाहूंगा। और विलास निकम जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी सर जी। और जुड़ने वाले में मैं बता दूं आपको, ये क्या नाम है इनका, राकेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। गजानन सरकार जी हैं, वेलकम है। और शाहिद अंसारी जी वेलकम है मेरे दोस्त। और साथ ही साथ अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। मतलब जितने भी दोस्त सुनते हैं सभी का वेलकम वेलकम वेलकम करते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो भाई मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं निकला गड्डी लेके, अब कहाँ जा रहा हूँ अब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये फरमाइश आई हुई है हमारे अनिल मेहता।

0: क्या कभी आप किसी को छेड़े हैं ना गड्डी पर? वैसे तो भाई मैं तो छेड़ूंगा और मजा आएगा ना। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं हम। और मोहन निवाले जी भी जुड़ गए हैं, वेलकम है आपका भी मोहन जी। और साथ ही साथ आत्माराम पाटिल जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आत्माराम पाटिल जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। और साथ ही साथ जुड़ने वाले हैं हमारे क्या क्या नाम है ये प्रकाश दोने जी, तो प्रकाश दोने जी वेलकम है। आरिफ सिद्दी जी जुड़ चुके हैं, मुबारक हुसैन जी और गजानंद जी, सभी सभी का वेलकम करते हैं। और आप लोग मैसेज करते रहिए, मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में आपके फीडबैक को मैसेज को शामिल करने की कोशिश करूंगा। और कुछ मैसेज ऐसा लिखिए, यूनिक लिखिए कि ताकि मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि गाना अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं भी थैंक यू बोलते बोलते क्या ही मतलब बोर हो गया हूँ ना, इसलिए प्लीज ये थैंक यू वाला मैसेज प्लीज ना किया करें, कुछ ऐसा यूनिक मैसेज करेंगे ताकि मुझे मैं आपके मैसेज को पढ़ने पर मजबूर हो जाऊं, है ना। ऐसे मैसेज कीजिए ताकि की प्रोग्राम की खूबसूरती और बढ़े। ओके, अब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहूंगा। तो लेकिन अगला जो गाना है वो बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश से, चूंकि अब जाहिर सी बात है कि मैं निकला गड्डी लेके, तो बीच में अगर लड़की रास्ते में मिलेगी तो मुझे छेड़ना पड़े क्योंकि जब भी मैं लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, है ना। और इस गाने को लेकर आए हुए हैं हमारे फुलेबाग संजू भाव जी, गजानंद जी का ग्रुप और मिसाल अंगद जी।
1: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी,
0: जी, जी
1: आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: अमन सर जी,
0: जी, जी बोलिए,
1: कैसन बानी?
0: बहुत बढ़िया, रौरा बतनी कैसन बानी?
1: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी,
0: जी, जी
1: मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोदवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है मंगलवार और आज की अपनी थीम है स्टार 90 स्पेशल, तो आज के कार्यक्रम में 90 के सभी गीत चलने वाले है सर। तो हमने भी एक 90s का गीत चुना है सर, फिल्म का नाम है यह दिल लगी और यह फिल्म 6 मई 1994 को रिलीज हुई थी। सर आप हमें इसी फिल्म का एक सदाबहार गीत सुना दीजिए जिसे आवाज़ें दिए है अभिजीत भट्टाचार्य जी इन्होंने, और गीत के बोल सर इस प्रकार हैं। जब भी कोई

0: ओले ओले। अमन सर जी,
1: जी
0: आप ये गीत सुना दीजिए।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ, और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं हमारे मिसाल अंगद जी, और सभी दोस्तों को हमेशा की तरह ये डेडिकेट करते हैं हमारे संजू भाऊ।
2: हेलो अमन सर
1: जी, बता दीजिए।
2: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में एक गीत भेज रहा हूँ, और अमन सर जी आज के 90 स्पेशल में मुझे 90s का ही गाना सुनने का है, जो ये दिल लगी इस फिल्म का गाना है, और गाने के बोले जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। अमन सर जी, ये सैफ अली खान पर फिल्म में हुआ गाना है, और ये गाना मैं सबसे पहले आपको डेडिकेट करूँगा, फिर आपकी सुंदरता की मूरत।
1: धन्यवाद
2: अमन सर जी, दोनों के लिए भी ये गाना मैं पेश
1: करूंगा। धन्यवाद, और जितने भी दोस्त हैं सभी के लिए ये डेडिकेट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑडियो में लंबा प्ले नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए गाना प्ले करता हूँ। ओले ओले, एंजॉय कीजिए, और आते इस ट्रैक के बाद।

और मेरे पास मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि हमारे इशाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम इशाक भाई, अशोक दसपूत जी, सर्वजीत सेठी जी, प्रमोद कुमार जी, सर्वेश राघव जी, नंदलाल जी, मोहन नेवाले जी, गजानंद जी, राकेश शर्मा जी, नाहिद जी, रविंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। अनिल मेहता जी और राजेश कुमार जी, जाकिर जी, सभी सभी सभी के मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, सभी फीडबैक दे रहे हैं।

0: बिल्कुल। तो अगर आप देखते हैं लड़की को तो क्या आपका दिल ओले ओले बोलता है कि नहीं? भाई मेरा तो बोलता है कि नहीं। वैसे गाना बहुत ही अच्छा लगा और सभी की पसंद हो। माय गॉड, आए तो एक से बढ़कर एक कमाल कमाल वाले गाने हैं, सुनने को मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक। लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो नूर आलम जी का है, सुनना चाहते हैं जब से तुम्हें मैंने देखा सनम। हाँ, लड़की को देखेंगे तो यही गाना उनके दिमाग से आएगा ना। इंजॉय कीजिए नूर आलम जी इस गाने को, और जैसे कि ये सभी को डेडिकेट करते हैं हमेशा की तरह।
1: जब से तुम्हें मैंने देखा सनम,
2: है
1: जब

और मेरे पास लगातार दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। उसमें से एक मुझे यानी कि मैसेज पसंद आया, हमारे यानी प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, लिखते हैं कि तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वही दौलत हो। और किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुदा और तुम तो खुद से मैं क्या बताऊं, इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मैं भी कुछ कहूंगा।

और प्रमोद जी मैं तो यही कहूँगा कि मेरी जिंदगी की रौनक की वजह हो तुम, मेरी जिंदगी में रौनक की वजह हो तुम, मेरे ख्वाबों में परियों की जगह हो तुम, और जिस आईने में खुद को रोज रोज तुम संवारती हो, जिस आईने में तुम खुद को रोज संवारती हो, उस आईने की खूबसूरती की वजह हो तुम, उस आईने की खूबसूरती की वजह हो तुम। और बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हैं मेरे पास, जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगड़ जी लिखते हैं कि आज हमारे आदरणीय श्रोता मित्र पीएस नावकर जी का जन्मदिन है, उनको बगड़े परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी तो मुझे नहीं पता था कि उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पीएस नावकर जी, आप जियो हजारों साल। और जो भी दोस्त उन्हें शुभकामनाएं मैसेज देना चाहता है तो रेडियो हॉटस्टार के उस खूबसूरत ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है शट आउट, और शट आउट में अपना जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज दीजिएगा ताकि दोस्त वो देखें आपने, मतलब किन किन दोस्तों ने उनको विश किया है, वहाँ पे सब सब दिखेगा बिल्कुल। तो वहाँ से अपना मैसेज भेज सकते हैं कि ताकि वो भी देख सके, और जो दोस्त मैसेज करेंगे वो उनका मैसेज उन तक पहुँच जाएगा बिल्कुल इसके माध्यम से। ओके धन्यवाद। वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, जैसे कि सर्वजीत सेठी जी का भी है, अभिषेक तिवारी जी हैं, जाकिर खान जी हैं, और ये लिखते हैं जाकिर खान जी कि तेरी पसंद मेरी चाहत बन गई, हाय कि तेरी पसंद मेरी चाहत बन गई, और तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल की राहत बन गई, खुद भर देना और खुद भर दे तेरा दामन खुशियों से। अच्छा खुदा भर दे, ये आपको ऐसा लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था कि खुदा भर दे तेरा दामन खुशियों से, क्योंकि तुझे खुश देखना मेरी आदत बन गई। तो थोड़ा सा स्पेलिंग भी मतलब ठीक करके भेजा कीजिए ताकि मुझे लगे कि मैं भी कुछ उस पर से कुछ आपके लिए बोल सकूं। सर्वजीत सेठी जी हैं, और भी हमारे दोस्त सरफराज जी हैं, सब मतलब क्या कहें, सभी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपने हमारा। अच्छा एक और चीज है, एक और मैसेज हमारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी ने लिखा है कि हमारे आदरणीय श्रोता मित्र ने पीएस नावकर जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, और संतोष यानी कि कालजयी स्वपन तैयार जी, राजू माठे जी, नारायण भाऊ इंग्ले जी और प्रमोद बगाड़, अच्छा ये साथ में सुन रहे हैं। ओके धन्यवाद, सभी का वेलकम करते हैं हम आज के शो में। ओके और अगला गाना सुनवाते हैं, अगला गाना जब से तुझे देखा सनम, अब इसके लिए तो मुझे अगला गाना तू मेरी जिंदगी है पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली आखिर मतलब ख्वाहिश और आखिरी है। अशोक पाल जी का ये गाना है, सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए और कुछ अच्छा भेजिए ताकि मैं आपके मैसेज को शामिल करूँ।

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तू मेरी जिंदगी है और तू मेरी हर खुशी है और तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ तू ही तो है। वैसे मेरे पास एक मैसेज पहुंचा हुआ है यहाँ पे, नाही जी का लिखती है कि तेरे ख्यालों में डूब जाता हूँ मैं। अच्छा, लिखती है कि तेरे ख्यालों में डूब जाता हूँ मैं और तेरी यादों का सहारा मैं पाता हूँ मैं, और तुम तो तुम हो तो ऐसा लगता है जिंदगी में जन्नत है, कि तुम हो तो ऐसा लगता है जिंदगी में कि जन्नत है, और तेरे बिना हर लम्हा अकेला सा लगता हूँ मैं। आह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा आपने कहा है। वैसे मैं भी कुछ कह दूं क्या, मैं तो यही कहूंगा कि मेरी जिंदगी की रोशनी तुम से हो, मेरी जिंदगी की रोशनी तुम हो, मेरे ख्वाबों की परी तुम हो, और क्या कहूं, मतलब या कुछ और कहता हूँ, क्योंकि ये तुम मैंने, हाँ, ये खूबसूरत हो तुम और दिलकश दिलकश मुस्कुराहट है तुम्हारी, खूबसूरत हो तुम, दिलकश मुस्कुराहट है तुम्हारी, और एक झलक पाकर ही धड़कने बढ़ जाती हैं हमारी, क्यों है ना। वैसे अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ और वो गाना बहुत ही प्यारा है, क्योंकि जिंदगी बन गए हो तुम, जिसे लेकर आए हैं राकेश शर्मा जी ग्रेटर नोएडा से। सुनवाते हैं इस गाने को, एंजॉय कीजिए इस प्यारा सा ट्रैक।

बिल्कुल, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए तुम। वाह, कितना प्यारा गाना था ना, आपको अच्छा लगा ना? मुझे तो बहुत पसंद है ये गाना, और दिल मतलब जब भी सुनो खुश हो जाता है, एकदम मजा आया था इस गाने को सुनकर। वैसे बहुत से दोस्तों का लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि गजानंद जी हैं, प्रमोद जी हैं, और प्यारे प्रमोद बगाया जी हैं, नूरा

0: दिलबर।
1: और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन एक मैसेज है कि ना ही जी लिखते हैं कि कल ना होंगे हम न गीला होगा, और सिर्फ चिमकी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता ले, जाने जिंदगी का कल कौन सा फैसला होगा। जी बिल्कुल सही कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और वैसे मेरे पास मैसेज बहुत सारे आए हुए हैं, हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बघाड़ी जी का आया हुआ है, और बता दूं कि गजानन सलोकार जी का, अरुण मंडल जी का, राकेश शर्मा जी का है, संतोष काले जी का, एमडी नाजिम जी का, बिट्टू कुमार जी का, अशोक देशमुख जी का, शमशाद हुसैन जी का, नूर आलम जी का, फैज आलम जी का, अजय भगत जी का, सर्वजीत सेठी जी का, प्रमोद कुमार जी का, इतने सारे दोस्तों के एक से बढ़कर एक मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैंने इनका नाम शामिल किया हुआ है। लेकिन अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो एमडी नाजिम जी का है, क्योंकि गाना बहुत इन्होंने प्यारा लेकर आए हुए हैं कि तुम ही से तुम ही को चुरा लेंगे। दुलारा का ये गाना एंजॉय कीजिए, नाजिम जी सभी दोस्तों के लिए गाना इनका डेडिकेट है।

और यहाँ पे हमें शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा इन्होंने लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं कि दिल के कागज पर कोई पैगाम लिखूं, दिल के कागज पे कोई पैगाम लिखूं, आज फिर महफिल में तेरा नाम लिखूं, भूल जाऊं मैं जमाने के सारे गम, भूल जाऊं मैं जमाने के सारे गम, जब भी आंखों से तेरी जाम लिखूं, और धड़कन में तुम ही तुम बसते हो ऐसे, धड़कनों में तुम ही तुम बसते हो ऐसे जैसे सुबह की शुरुआत और हसीन शाम लिखूं, और फासले जितने भी हो हमारे दरमिया, फासले जितने भी हो हमारे दरमिया, मैं अपनी हर धड़कन तेरे नाम लिखूं, तुम मिलो तो मुकम्मल हो ये जिंदगी, तुम मिलो तो मुकम्मल हो ये जिंदगी, वरना इस सफर को मैं नाजुक अंजाम लिखूं, और तुम्ही से तुम्ही को चुरा लेंगे। ये वाला गाना बहुत ही प्यारा है, और लिखते हैं कि तुम्ही से तुम्ही को चुरा लेंगे एक दिन, और तुम्हें अपना दिल हम बना लेंगे एक दिन, और छुपाओगे कब तक तुम इन धड़कनों को, मोहब्बत की दुनिया बसा लेंगे एक दिन, नजर से नजर जब न मिलेंगी हमारी, और तुम्हारी हर एक शय चुरा लेंगे एक दिन। बिल्कुल, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भाई मैं तो यही कहूंगा कि तेरी मुस्कान में ऐसा नूर है, कि तेरी मुस्कान में ऐसा नूर है, हर चेहरे से अलग तेरा गुरूर है, और तुझे देखकर ये दिल बस इतना कहता है कि तू खुदा की सबसे खूबसूरत दस्तूर है। बिल्कुल, और वैसे मेरे पास बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको, हमारे नंदलाल जी हैं, आत्माराम जी हैं, नाजिम जी हैं, और राजमल हिवराले जी हैं, और प्रमोद कुमार जी हैं, नूर आलम जी हैं, रंजीत जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, बिट्टू जी हैं, मतलब सभी के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, और सभी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे गाने पर फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन बस मैं नाम बता रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि इन दोस्तों ने आपके लिए वो फीडबैक दिया है कि आपका गाना बहुत ही उन्हें पसंद आया, उन्हें अच्छा लगा, और उन्होंने आपको शुक्रिया और थैंक यू कहा है। लेकिन मैं ये बार बार आपको नहीं कहूंगा, बस समझदार के लिए इशारा काफी होता है, आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे मैं गाना अगला जरूर प्ले करूंगा, और ये भी गाना बहुत ही प्यारा है, जिसे कौन सा गाना है मैं आपको बता दूं कि दिल मेरा चुराने लगा है, रंजीत जी के पसंद है, और सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं।

नाई जी लिखती है कि धड़कन को सींचती है आदत तुम्हारी, हर सांस में अब तो बसी है चाहत तुम्हारी, तुम हमसे दूर रहकर ही पास हो इतने कि दिल को छू जाती है हर बात तुम्हारी, और धीरे धीरे वो दिल मेरा चुराने लगा, अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे आजमाने लगा, अब तो हर लम्हा उसी का ख्याल रहता है जैसे वो मेरी रूह में समाने लगा है। आए है, है, है क्या बात है जी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तेरी आंखों की चमक लाजवाब है, कि तेरी आंखों की चमक लाजवाब है, तेरी हर अदा बेमिसाल है, और तारीफ करूं तो भाई कैसे करूं, क्योंकि तू खुद ही एक बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब है।

और दोस्तों का मैसेज आ रहा है कि अमन सर जी आप फीडबैक लिया कीजिए। ओहो मैं क्या करूं, मैं सोचा हूं कि कुछ अलग तरह के शो किया जाए, डेली एक ही तरह का शो होता है तो क्या आप उससे बोर नहीं होते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है कि आपने मेरा गाना प्ले किया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी थक जाता हूं ना यार, कम से कम इसका आप ख्याल रखें, थोड़ा सा कुछ अलग अगर शो मिलता है आपको, गाने अच्छे प्ले हो रहे हैं और अच्छे अच्छे दो लोगों की बातें आ रही हैं, तो क्या ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जरा मुझे बताएंगे। वैसे मैं आपका नाम तो ले रहा हूँ ना कि हाँ, ये इन दोस्तों का मैसेज मेरे पास आया हुआ है, जैसे कि आत्माराम पाटिल जी हैं, ये आ गए हैं, और साथ ही साथ हमारे नाजिम जी हैं, प्रमोद जी हैं, नाही जी हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मोहन निवारी जी हैं, शमशाद हुसैन जी भी हैं, और ये नाम इनका हम मेरे दोस्त लतीफ अहमद जी हैं, रंजीत कुमार जी हैं, और रूपचंद गोयल जी हैं, साथ ही साथ मैं बता दूं कि एमडी फैज आलम जी हैं और बिट्टू कुमार जी हैं। इन सभी के मैसेज आप सबके फीडबैक के लिए ही तो आ रहे हैं कि इतने दोस्तों ने फीडबैक दिया आपके गाने को पसंद किया है। और यहाँ पे शमशाद जी तो यही लिखते हैं कि धड़कन में उसकी चाहत का पैगाम आ गया, हाय हाय, धड़कन में उसकी चाहत का पैगाम आ गया, और लब पर हमारे आज फिर एक नाम आ गया, और तन्हाइयों का खौफ हमें अब नहीं रहा, क्योंकि तन्हाइयों का खौफ अब हमें नहीं रहा, क्योंकि जब से हमारे हाथ में उनका जाम आ गया है, क्या बात है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि तेरी सादगी दिल को भा जाती है, तेरी सादगी दिल को भा जाती है, हर नजर और तुझ पर ही ठहर जाती है, यूं तो तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना, यूं तो तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना, क्योंकि तेरी हंसी दुनिया सजा जाती है, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, और मैं तो यही कहूंगा कि हंसते रहो हमेशा, क्योंकि तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, हंसते रहो हमेशा, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, मुस्कान जो तुम्हारे होठों पे बिखरी है वही तो जिंदगी हमारी है, क्यों है ना। वैसे अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ जिसे लेकर आए हुए दिगंबर सिंह जी, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, इंजॉय कीजिए दिगंबर जी, गाना प्ले कर दिया आपका।

और मैं बता दूं कि बहुत से दोस्तों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, जैसे कि सर्वजीत सेठी जी हैं, अभिषेक तिवारी जी हैं और हमारी नंदनी माँ जी हैं, और बता दूं कि हमारे दोस्त नाम है उनका मिस्टर लतीफ अहमद जी ये भी हैं, और लिखते हैं कि आज का तो प्रोग्राम लाजवाब चल रहा है। जी थैंक यू सो मच भाईजान। एंड आरिफ सिंधी जी भी हैं और ये लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है ना वो शायराना अंदाज और ये आपका पेश करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। ओ थैंक यू सो मच जी। और लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समय को बचा रहा हूँ, ज्यादा फीडबैक में समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों के मतलब इन आप फीडबैक भेजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, यही बहुत है आपके लिए, क्योंकि मैं आपके मैसेज में क्या होता है, हाँ आपका गाना मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो ये आपका नाम ले रहा हूँ, मतलब जो अगला दोस्त ने फरमाइश भेजा है वो समझेगा कि हाँ आपने उनके गाने पर फीडबैक दे दिया है, मतलब समझ रहे ना। हाँ अगर कुछ आपके मैसेज में स्पेशल रहा तो मैं जरूर आपके उस मैसेज को शामिल करूंगा 100%। ओके इग्नोर नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बिट्टू कुमार जी हैं और राजमल हिवराले जी भी हैं, साथ ही साथ हमारे प्रमोद कुमार जी हैं, लिखते हैं कि तुम्हारी इस सादगी का मैं क्या मिसाल दूं, लिखते हैं कि तुम्हारी सादगी का मैं क्या मिसाल दूं, इस सारे जहां में तुम बेमिसाल हो और तुम्हें अपने हुस्न को संवारने की क्या जरूरत है, और सादगी में भी तुम क्यामत की अदा रखती भाई, है, है, है, है, क्या बात है भाई। मैं तो यही कहूंगा कि तेरा चेहरा जैसे चांद का नूर और तेरी बातें जैसे मीठा सुरूर, जो एक बार तुझे देख ले वो हो जाए क्या मतलब क्या बताऊं, वो हो जाए तुझ पर बिल्कुल फिदा जरूर। ओके और यहाँ पे नाजिम दिलते हैं कि औसम सॉन्ग है जी, बिल्कुल वो तो औसम सॉन्ग था ही भाई। और नाहिद जी लिखते हैं कि ये तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म हर जज्बात मेरा, लिखती हैं कि तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म हर जज्बात मेरा, तुम्हारी ही यादों में गुजरता है दिन और रात मेरा, अब तो जमाने को बस इस बात का अंदाज है कि मेरा प्यार तू, मेरा दिल तू और मेरी जान तू, है क्या बात है, क्या लिख दिया आपने। नहीं जी, जितेंद्र जी हैं, रंजीत जी हैं और नंदलाल जी हैं, ये सभी दोस्तों के मैसेज हैं, आप सभी के लिए फीडबैक है और थैंक यू सो मच, आप सभी ने फीडबैक दिया। अगला गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है और जिसे लेकर आए हुए हैं राजेश कुमार जी ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से, दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया सच में, बहुत प्यार किया है।

0: बिल्कुल प्यार किया है, बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया। वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आ चुका है भाई, क्या क्या बताऊं, किनका मैसेज है। एक तो मुझे मैसेज शामिल करना ही पड़ेगा, हमारे आदरणीय सर्वेश भगत जी का, बेचारे क्या कह रहे हैं इनकी सुन लेते हैं कम से कम।
1: अरजय अमन सर जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, ऐसा ही चलाइए।
0: अच्छा,
1: अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच।
1: सर्वेश भगत बोल रहा है। थैंक यू सर
0: जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है। देखिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा बिल्कुल, अगर नहीं तो कोई और तरीका अपनाऊंगा, है कि नहीं, या जैसे चल रहा है वैसे चलने दूंगा। क्यों, आप लोग की भाई खुशी में मेरी खुशी है, मुझे क्या करना है, मुझे तो प्रोग्राम करना है, चाहे आप जैसे खुश रहे। ओके, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि सर्वजीत सेठी जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, और संतोष गौंड जी हैं, और जितेंद्र सिंह जी हैं, इनका तो मैसेज है, लेकिन कुछ मैसेज स्पेशल भी है, जैसे कि उनमें कुछ है, उस मैसेज को तो मुझे शामिल करना पड़ेगा ना। जैसे कि हमारे सर्वजीत सेठी जी लिखते हैं कि दिल की, अच्छा और भी कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत दिल की धड़कन को बस इतना ही एहसास है। लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत और दिल की इस धड़कन को बहुत ही सुंदर एहसास है, जो दूर है वो भी दिल के बेहद पास है, इस नादान दिल को और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे होने का भरोसा ही हो, इसके लिए वही खास है। अच्छा, लिखते हैं कि दिल की धड़कन में बसने लगा है ये प्यार तेरा, दिल की धड़कन में बसने लगा है ये प्यार तेरा, और हर सांस को रहता है अब इंतजार तेरा, मिट गई दूरियां जब से तूने मुझे अपना माना। हाय हाय, क्या बात है, सच में मेरे दिल की आवाज है भाई। लिखते हैं कि मिट गई दूरियां जब से तूने मुझे अपना माना, अब तो बस जिंदगी भर का है साथ हमारा। जी बिल्कुल, जिंदगी भर का, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। और भी मैसेज है मेरे पास, जैसे कि ये क्या कहती हैं, लिखती हैं नाही जी कि दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है वाला, इस पर मेरी लाइन है कि दिल जाने जिगर तुझ पे आकर ठहर गई। अच्छा, लिखती है कि दिल जाने जिगर तुझ पर ही आकर ठहर गई है नजरें मेरी, और अब तेरी ही यादों में करती हैं ये रातें मेरी, जमाने भर की खुशियां एक तरफ और तेरा साथ एक तरफ, और तुझसे ही तो मुकम्मल होती हैं सब बातें मेरी। लोग कहते हैं कि दिल की ही धड़कन है जिंदगी, पर मेरी धड़कन की वजह तो सिर्फ तुम हो। आए हाय हाय हाय, क्या बात है जी। और मैं बता दूं कि हमारे शमशाद जी क्या कहते हैं, ये लिखते हैं कि दिल जाने जिगर तुझ पे निसार कर बैठे, और हद से ज्यादा तुझसे प्यार कर बैठे, एक और तेरी एक नजर की हसरत में ऐ सनम, तेरी एक नजर की हसरत में ऐ सनम, हम सदियों का लंबा इंतजार कर बैठे। आए हाय हाय, और लिखते हैं कि तन्हाई की राहों में कोई उम्मीद ना थी, लिखते हैं कि तन्हाई की राहों में कोई उम्मीद ना थी, फिर भी हम तेरा ही एतबार कर बैठे। क्या बात है भाई, आप लोग तो गाने के साथ मिला के ऐसे ऐसे शायरियां ला रहे हैं कि दिल गदगद हो जा रहा है, ये क्या कहते हैं, जरा इनकी सुनते हैं।
2: सर बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, इसमें समय का बचत है और सब दोस्तों का गाना भी शामिल हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि हमारे ये प्रमोद जी लिखते हैं कि सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है। हाय हाय, क्या बात है, क्या कह दिया भाई। लिखते हैं कि सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है, और पूछते थे कि ना कितना प्यार हम तुमसे कर बैठे। वाह, क्या बात है। और मेरे पास और सारे जो मैसेज हैं, जैसे कि एमडी फैज आलम जी हैं, रंजीत जी हैं, मोहन नेवारे जी हैं, राजमल हिवराले जी हैं, रोहित कुमार जी हैं, और बिट्टू कुमार जी हैं, जितेंद्र जी हैं, इन सभी का वही पुराना वाला मैसेज है ना, आप समझ रहे ना, मतलब क्या ये कहना चाहते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया और दिल से उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। जी आपका थैंक यू मैंने उन तक पहुँचा दिया है। नाजिम देखते हैं कि ये तुम्हें देख के लगता है ये कि सुंदरता की मूरत हो तुम। आए है सच में कि तुम्हें देख के लगता है ये कि सुंदरता की मूरत हो तुम, और हर चेहरा तुमसे रोशन हो, हर खाम में रात हो तुम। लेकिन जनाब मैं तो यही कहूंगा कि तू फूल नहीं गुलशन की बहार है, तू फूल नहीं गुलशन की बहार है, तेरी हर अदा दिल का करार है, और तेरी तारीफ में क्या लिखूं। तुम तो एक मेरा खूबसूरत सा ख्याल है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा। और वैसे अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूं, और ये गाना मैं सुनाऊंगा सर्वजीत सेठी जी का। लिखते हैं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, गाना सभी दोस्तों को सुनवाना है, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल सच में तुम नहीं आते तो हम मर जाते ना। वैसे गाना बहुत ही प्यारा लगा मुझे, दिमाग में अचानक से याद आ गया तो सोचा कि चलो प्ले कर देते हैं आप सब दोस्तों के लिए। और मैं बता दूं कि एक नए दोस्त जुड़ चुके हैं, नाम है निखिल काले जी। तो बहुत बहुत वेलकम है निखिल काले जी। लिखते हैं आरजे अमन जी नमस्कार, सर मैं निखिल काले फ्रॉम सोलापुर। सर मैं इंडियन आर्मी में हूँ और मेरे दोस्तों को आज मैं गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ जी। तो बिल्कुल मैं आपका गाना को प्ले करूंगा लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, ओके। और हमारे शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि ओ माय गॉड, इन्होंने बहुत लंबा पैगाम लिख दिया भाई, इतना लंबा पैगाम लिख दिया कि मैं क्या बताऊं। लिखते हैं कि मोहब्बत में हमें तो बस यही पैगाम लिखना है और तुम्हारे नाम के आगे ही अपना नाम लिखना है। जमाने की तमन्नाओं से अब हमको क्या हासिल, हमें तो जिंदगी का हर सफर तुम्हारे नाम लिखना है और मुझे सिर्फ तुमसे ही दिल लगाना है और कसम ले लो, और तुम्ही को सुबह ही और शाम लिखना है, और नजर कोई और अक्स अब आ ही नहीं सकता कि इस दिल पर तुम्हारा चाह का नाम लिखा है, और इजहार वफा का सिलसिला रुकने नहीं देना, दिल की धड़कते दिल की एक सांस को गुलाम लिखा है, और मिले जो जख्म में हम वो सह नहीं पाते। अच्छा ये अगला लाइन है कि मिले जो जख्म वो हम सह नहीं पाते और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम्हारी याद जब तड़पती है रात भर ये आंसू आंखों से बह नहीं पाते, जमाने भर की खुशियां मेरे पास है मगर हम खुश कभी दिख नहीं पाते, जो कहना चाहते हैं दिल की बातें हम सामने आते हैं तुम्हारे वो कह नहीं पाते, जुदा होकर तुम ऐसे मेरे हमदम एक पल भी तुम्हारे बिना जिंदा हम रह नहीं पाते। जी बिल्कुल भाई, क्या लिख दिया आपने भाई, मजा आ गया। जितेंद्र जी, बिट्टू कुमार जी, अशोक देशमुख जी ये लिखते हैं, मतलब गाने की तारीफ इन्होंने किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप सभी का। गजानंद सोलकार जी भी है, मोहन निवारे जी है, सभी दोस्तों ने गाने पर फीडबैक दिया है, सभी का थैंक यू सो मच, इतना आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। और नाही जी क्या लिखती है, जरा ये लिखती है कि धड़कन अधूरी सी लगती है जब तुम पास नहीं होते, लिखते हैं कि धड़कन अधूरी सी लगती है जब तुम पास नहीं होते हो और कोई और मंजर हमें रास नहीं आते हैं, और सच तो यह है कि इस कदर आदत हो गई है तुम्हारी कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। आए हाय हाय, क्या बात है जी, क्या बात है, लिख दिया आपने बहुत अच्छा। मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मीना कुमारी जी। और ओके और मोहन, अच्छा ठीक है, ओके हो गया। और जुड़ चुके हैं हमसे रामकेश जी, बहुत दिन बाद, बहुत बहुत अच्छा लगा, अब बहुत दिन बाद आए हैं, वेलकम है। और किशन पाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है किशन पाल जी। और ओके जी, और यहाँ पे ये प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि तुम मेरी जिंदगी की वो खूबसूरत हकीकत हो जिसके बिना मेरी दुनिया बिल्कुल अधूरी सी लगती है। बिल्कुल जी, ऐसा ही होना भी चाहिए। और इसी बात पर अगला गाना जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ वो है आरिफ सिंधी जी का, और आरिफ सिंधी जी बहुत ही प्यारा गाना लेके आए हुए हैं। आरिफ सिंधी जी ये लिखना, ये क्या सुनाते हैं, सुनते हैं।
1: अस्सलामु अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से।
0: जी जी,
1: आज के गाने के बोल रहेंगे

अदाए भी है, मोहब्बत भी है मेरे महबूब में। फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं। डेडिकेट रहेगा अमन सर जी आपको, आपकी सुंदरता की, मुरत जी को, वंशिका जी को, परमार सर जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात।

और हमारे ये स्वपन तायड़े जी जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम है स्वपन तायड़े जी। लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम मैं पहली बार सुन रहा हूँ उमन सर जी, आज का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच जी आपका भी। और मैं बता दूं कि मोहन निवारे जी का, बिट्टू कुमार जी का, सैयद यूनुस जी का और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी का, जितेंद्र जी का, रामकेश जी का और अशोक देशमुख जी का और अकपुर चंद जी का, नाही जी का, आरिफ सिंधी जी का, मतलब सभी दोस्तों का मैसेज आया हुआ है और सभी दोस्तों ने गाने की भी तारीफ की है, प्रोग्राम की भी तारीफ की है और कुछ मेरे पास मैसेज भी है वो मैं शामिल करूंगा। जैसे कि नाही जी का मैसेज है, वो लिखती है कि लाखों अदाएं हैं मेरे महबूब में, लाखों अदाएं हैं मेरे महबूब में, वो हर अंदाज से कमाल करता है और कभी झुक कर देखना शरारत से तो कभी उठ कर देखना बवाल करता है। अच्छा, वो मासूमियत से भी जब वो मुस्कुरा देता है महफिल में, देखने वाले को दिल पर सीधे वार करता है। हाय हाय, क्या बात है जी, कहाँ कहाँ से ला रही हैं, इतना बेहतरीन बेहतरीन। ओके, और यहाँ पे एक शायद और भी मैंने देखा था, किनका था, शायद हमारे ख्याल से ये प्रमोद जी लिखते हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना वो कमाल होता है, नशीली आंखों से संभला तो भाई बाकमाल होता है, और किसी को देखकर तो हर कोई पिघल जाए, जो देखकर पिघले वो दिल बाकमाल होता है। है, है, है, क्या बात है, क्या बात। ओके जी, अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ अगले दोस्त की, और जिसे ये इनको हम सफर चाहिए, लेकिन हम सफर वाला तो मैं बाद में प्ले करूंगा, पहले मैं भोली से सूरज जरूर प्ले करूंगा जाकिर खान जी का, क्योंकि ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इंजॉय कीजिए भोली सी सूरत

बिल्कुल भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी सरमाए। और जैसे फीडबैक देने वाले दोस्तों का वो नाम है हमारे गजन सुरकार कपूर चंद जी, मोहन नेवारे जी और रामकेश जी है और एमडी फैज आलम जी है। इन दोस्तों ने फीडबैक दिया हुआ है। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि बेवफा से दिल लगा लिया नादान थे हम। अच्छा, बेवफा से दिल लगा लिया नादान थे हम, गलती हमसे हुई थी क्योंकि इंसान थे हम, और आज जिन्हें नजरें मिलाने में तकलीफ होती है और कुछ समय पहले उनकी जान थे हम। अय है, है, है, है, क्या बात है भाई, जान लीजिएगा का हमारा। और नाजिम जी लिखते हैं कि चांद को गिराने का दिल तो करता है, लिखते हैं कि चांद को गिराने का दिल तो करता है पर तू उसमें बसे तो अच्छा लगता है, और तेरी आंखों में आंखें डालूं तो लगे कि तारों में कम से कम तू ही तो हर शब्द में बसता है। जी बिल्कुल भाई, बसता है तो बसता है। और मैं बता दूं कि हमारे इन्होंने कहा क्या, यानी प्रमोद कुमार जी ने कहा है कि जितना प्यारा चेहरा अदाएं भी उतनी है खूबसूरत है, और सीरत की क्या तारीफ करो, मुझे भाती तुम्हारी प्यारी सी सूरत है। जी बिल्कुल भाती है भाई। नाही जी लिखती है कि जमाने भर की रौनक एक तरफ और उसकी भोली सी सूरत एक तरफ, उसका मुस्कुराना जैसे अंधेरे रात में चांदनी का खिल जाना होता है। अब इस नादान दिल को मैं कैसे समझाऊं कि जिसका नाम ही बन गया है सुबह शाम, उसके ख्याल में ही खो जाने का दिल करता है। जी खोजिए खोजिए, बिल्कुल खोजिए। तब तक मैं अगला गाना को प्ले करता हूं, और वो गाना है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। इंजॉय कीजिए, आते हैं इस गाने के बाद। और इस गाने को सुनना चाहे हैं राजमल हिवराले, मंगेश देशमुख जी और मोहन नेवारे जी। इंजॉय कीजिए।

अब भाई जाहिर सी बात है, गोरा गोरा अगर मुखड़ा होगा तो काला चश्मा पहनेंगे तभी तो खूबसूरती और झलकेगी ना, है कि नहीं? अगर गोरा मुखड़ा है और वैसा कुछ चश्मा लगा दे तो कैसा लगेगा देखने में? अच्छा नहीं लगेगा ना।

गर्ल का मैं सच में गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे मेरे पास फीडबैक भी आ रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे सर्वजीत सेठी जी का है ना, और ओके सर्वजीत सेठी जी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बीके पंत जी क्या कहते हैं, ये लिखते हैं कि इन पलके बिछाकर हम आपका स्वागत करते हैं, दिल की गहराई से हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपके आने से इस महफिल में रौनक आ गई है, बस इसी तरह खुदा खुश रहे हम यही दुआ करते हैं। आए है क्या बात है भाई। और रामकेश जी हैं, और रामकेश जी के साथ साथ हमारे मोहन नेवारे जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, और हमारे क्या नाम है इनका, ये किशन पाल शाक्य जी हैं। ये सभी दोस्त गाने की तारीफ करते हुए फीडबैक दे रहे हैं, और बहुत बहुत थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का आपके सपोर्ट के लिए। और शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि हटाते हैं जब रुखसार से वो जुल्फों के बादल, तो जैसे अंधेरे में कोई चिराग जलता है, वो शर्माना, वो पलके झुकाना, उफ तौबा, इस वो सादगी में तो भाई क्यामत का सुरूर हो रहता है, और नजरें मिलाकर वो मुस्कुरा देते हैं हंसकर, फिर तो दिल के धड़कने को मजबूर करता है। जी बिल्कुल मजबूर करता है भाई। और नाहिद जी लिखते हैं कि गोरे गोरे मुखड़े पर वो सादगी का नूर है। अच्छा, गोरे गोरे मुखड़े पर वो सादगी का नूर है जिसे देखकर हर दिल मरने को मजबूर है। अच्छा, और तुम्हारी एक झलक ही काफी है महफिल सजाने के लिए, और इस हुस्न के आगे तो चांदनी का चमकना भी बेनूर है। अच्छा जी, ये बात है, हमारा नाम मालूम रहा। और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि यानी चांद का तो बस यूं ही नाम बदनाम है, चांद का तो नाम मतलब इन चांद का तो बस यूं ही नाम बदनाम है, और हुस्न की असली मलिका तो तुम्हारा ये मुखड़ा, देखकर हम सारा आलम हैरान है। और क्या बताएं, बहुत ही प्यारा लगा ये गाना। ओके थैंक यू सो मच, इसी बात पर अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ। आज के जितने भी गाने हैं ना, सच में बहुत ही प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे गाने हैं, लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो डिमांड आई है नाहिद जी की, सभी दोस्तों को डेडिकेट गाना चाहती है।

क्या गाना है, सच में दिल को खुश करने वाला ये गाना है। अच्छा लगा ना आपको गाना? वैसे मैं बता दूं कि बिट्टू जी और मोहन निवारे जी और बहुत से दोस्त इस गाने की तारीफ कर रहे हैं, और लेकिन जाकिर खान जी लिखते हैं कि आप खुद नहीं जानते कि कितने प्यारे हो, जान हो हमारी या जान से प्यारे हो, दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल भी हमारी थी और आज भी हमारी हो। बिल्कुल भाई। और मैं बता दूं कि एक शायरी और भी है नाहिद जी की, लिखी है कि हर रात खुदा के सामने हाथ फैलाकर यही मांगा है, हर रात खुदा के सामने हाथ फैलाकर यही मांगा है कि मेरी दुआ में वो असर आए कि तुम सिर्फ मेरे हो जाओ, और हथेली की लकीरों में भले ही तुम्हारा नाम ना हो, पर मेरी दुआ की शुरुआत और आखिरी लफ्ज तुम ही हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और शमशाद जी लिखते हैं कि खुदा और भला, अच्छा खुदा से और भला मैं क्या मांगू, कि खुदा से और भला मैं क्या मांगू, कि उसकी गली से ही मेरा रोज गुजर जाए, चाहे जमाना लाख लाख वो पहरे लगा दे, मेरी मोहब्बत की उसे हर खबर आए, धड़कने उसकी भी मचलन लगे जब जब मेरे लबों पे उसका नाम आए, मिले सुकून इस तड़पते हुए दिल को, वो बन के मेरी जिंदगी में मेरा हम सफर आए। हम सफर पर चलिए गाना मैं आपको सुनवाता हूँ, इसे लेकर आए हुए हैं देवपाल मौर्या जी। इंजॉय कीजिए, हम सफर चाहिए, उम्र भर चाहिए।

और इस गाने को सुनने के बाद तो मुझे वो गाना याद आ रहा है जिसे भेजा हुआ है हमारे शाहिद अंसारी जी ने। गाना इनका मैं प्ले करूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ फीडबैक भी आए हुए हैं, जैसे कि बिट्टू कुमार जी का, जितेंद्र सिंह जी का और शैलेंद्र बुंदेले जी का और बीके पंत जी का है और मोहन निवारी जी का। लेकिन बीके पंत जी लिखते हैं कि न तुमसे नजर मिली न दीदार हुआ, बस दिल से दिल मिला और इश्क बेशुमार हुआ। वाह वाह, क्या बात है भाई, आपने चार लाइन में बहुत सारी बातें कह दी हैं। शमशाद जी लिखते हैं कि रात के इस सन्नाटे में कोई हम सफर ऐसा होना चाहिए जो खामोशी भी सुन ले, दिल भर ऐसा होना चाहिए, ढल जाए ये कली और राह चाहे उसकी बाहों में, और सुबह का पहला सवेरा फिर उसके जैसा ही वो शाम होना चाहिए। आए है क्या बात है। और प्रमोद जी लिखते हैं कि ये प्यार में दर्द ये सहना भी एक तरह की मोहब्बत है, और प्यार का दर्द इंसान को सबसे ज्यादा बदल देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे हम सफर की जिंदगी का असल तो साथी वही होता है कि हर रंग में वो हमारे साथ रहे और मुस्कुराता रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा होता होना भी चाहिए। और नहीं जी क्या लिखती है कि धड़कन ऐसा हो और धड़कन को एक नई आस और रूह को एक घर चाहिए, और तुम्हारे साथ गुजरे हुए हर लम्हा मुझे ऐसा असर चाहिए, और सुख दुख का हर एक धूप छाव में तुम मेरे पास रहो, हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही, सिर्फ तुम चाहिए। आए है क्या बात है। और वैसे हमारे नाजिम जी लिखते हैं कि न जाने ये कैसा गहरा नाता है तुमसे, दिल को सबसे ज्यादा वो सुकून आता है तुमसे, लोग ढूंढते होंगे जन्नत को आसमानों में, मेरी दुनिया तो बस तुमसे शुरू होती है। और जी बिल्कुल ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ शाहिद जी का, और शाहिद जी आपका गाना मैंने प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को, बहुत ही खूबसूरत गाना है।

और पहली बार हमसे जुड़ी हैं अंजलि मोहाड़े जी। अंजलि मोहाड़े जी बहुत बहुत आपका वेलकम है। और किशन पाल जी, बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि वाओ सुपर सुपर सुपर सॉन्ग चल रहे हैं और सभी गाने की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी आप सभी का। और राहे जी लिखते हैं कि अब खुदा से और क्या मांगू, अपनी दुआओं में मेरी सारी कायनात तो सिमट आई है तुम्हारी वफाओं में। तेरी बाहों में आकर जो सुकून मिला है इस दिल को, लगता है जैसे जन्नत मिल गई मुझे जमीन पर। वाह क्या बात है जी। और प्रमोद जी लिखते हैं कि ये तेरी आंखों में ऐसा जादू छाया है कि मुझ पर दुनिया भूल कर भी बस इन्हें देखने को दिल चाहता है। अच्छा जी। और साथ ही साथ हमारे नाजिम जी लिखते हैं कि ये तुम्हारी एक मुस्कान से खिल जाती है मेरी दुनिया और तुमसे ही रोशन होता है हर सुबह मेरी। यूं तो हंसी चेहरे बहुत है इस जमाने में लेकिन पर तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है मेरी। बिल्कुल और जी। और मेरे पास हमारे गजानंद जी का, मीना कुमारी जी का, जाकिर खान जी का, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज ऑटोमेटिक आ रहे हैं और सभी सभी सभी एक दूसरे के गाने के फीडबैक दे रहे हैं। अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो बिट्टू नहीं यानी कि प्रमोद जी का है। और प्रमोद जी हमेशा अलग तरह के गाने लेके आते हैं और उनका जो डिमांड है मैं आपको बता दूं किस गाने की है, ढलने लगी है रात। लेकिन मुझे तो एक काम करते हैं, वो तो ढलने लगी है रात लेकिन अभी तो एक गाना आया हुआ है आज शाम होने आई, पहले उसको सुनवाते हैं। वो मुझे भेजा है हमारे गोयल जी, आज शाम होने आई, जरा पहले इसको सुनते हैं फिर ढलने लगी रात वाला गाना प्ले करते हैं।

0: तेरी की।
1: ओके कोई बात नहीं जी, अगला मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन मैं इतना सारे फीडबैक आ रहे हैं, मतलब इतने सारे इन लोगों ने शायरी भेज दिया है कि मतलब मैं क्या बताऊं, मैं शायरी का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शायरी का जवाब भी मैं देते रहूं। बिट्टू कुमार जी, अशोक देशमुख जी, नाजिम जी, गजानन सलोकार जी और जितेंद्र जी और यहाँ पे अमीना जी, सभी दोस्तों ने गाने की तारीफ किया है और अपना अपना फीडबैक दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अंजलि मोहाड़े जी लिखती हैं कि सर मेरी डॉटर है, हम दोनों प्रोग्राम, घर के सभी लोग प्रोग्राम सुनते हैं, रोज आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है और मेरे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण मेरी बेटी के मोबाइल से। अच्छा, ओ रवि मोहाड़े जी हैं, ओ माय गॉड, मुझे लगा ये अंजलि मोहाड़े जी कौन है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आप है ना उनसे मैसेज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम जी, आप प्रोग्राम सुनते हैं ना, बहुत है मेरे लिए जी। और यहाँ पे नाही जी क्या लिखती हैं, लिखती हैं कि देखो फिर शाम होने आई है, ठंडी हवा अपने साथ तुम्हारी याद लाई है और थम सा गया नजारा इस ढलते सूरज के साथ, जैसे इस दिल पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परछाई है। आहा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तेरी हंसी से खिल उठती है बहार और तेरे होने से लगता है जैसा कि होए कोई त्योहार, और खुदा ने बड़े प्यार से बनाया है तुझे, खुदा ने बड़े प्यार से बनाया है तुझे, क्योंकि तू है इस दुनिया का सबसे सुंदर मेरे लिए उपहार। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूं वो गाना हमारे यानी प्रमोद जी का है, और प्रमोद जी आपका गाना मैंने प्ले कर दिया है, इंजॉय कीजिए।

0: और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो दोस्तों ने, जैसे कि अशोक देशमुख जी हैं और एमडी नाजिम जी हैं और ये हमारे बिट्टू कुमार जी हैं और गजानन सलोकार जी हैं, जितेंद्र जी हैं, इन सभी दोस्तों ने गाने पर फीडबैक दिया हुआ है कि गाना इन्हें बहुत पसंद आया हुआ है। और जैसे कि कुछ मेरे पास और भी फीडबैक है जिसे मैं बाद में शामिल करूंगा इस गाने के बाद। और ये गाना अनिल कुमार जी लेकर आए हुए हैं हरिद्वार से, कि सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। सच में यार, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही, क्योंकि क्या करूं, दिल नहीं भरता है ना। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: नींद नहीं आती,
0: बिल्कुल नहीं आती है। चैन

सच में सारी रात तेरी याद मुझे आती रही यार, क्या करूं, नींद नहीं आती है ना जल्दी मुझे। और जाकिर जी एक लाइन पहुंचा हुआ है, लिखते हैं कि नजर से नजर को नजर ना लगे। अच्छा, नजर को नजर की नजर ना लगे और कोई कोई यानी कि प्यार भी इस कदर ना लगे, और तुझे देखना है बस इस नजर से कि जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। वाह वाह क्या बात है भाई, आपने नजर पे शानदार वो शायरी भेज दिया है, अच्छा लगा है। शमशाद जी तो लिखते हैं कि ये पत्थर तो टूटे थे हम और चोट खाए भी ना थे, और बस जरा सा भरोसा किया था और तुम तो जान ही ले लिए। अमन भाई जान, अच्छा ओके, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मैं जितेंद्र जी लिखते हैं कि नींद से कह दो कि आज हमें कोई वास्ता नहीं रखे, लिखते हैं कि नींद से कह दो कि आज हमसे कोई वास्ता न रखे, आज फिर महफिल यादों की सजी है, और सारी रात तेरी याद आती रही कुछ इस तरह जैसे बुझते हुए दिए में लौ फिर से जगी। तो मैं ये कहूँगा, अगर आपने किसी को याद किया और वो आ जाए तो कैसा रहेगा, जैसे कि आइए आपका इंतजार था, मुझे गाना दिख रहा है वो भी यानी कि कायनात जी का, कायनात जी गाना प्ले कर रहा हूँ आपका, इंजॉय कीजिए। आइए आपका इंतजार था।

0: क्या बात है,
1: वैसे हम घबराए तो। ये गाना आपको डेडिकेट।
0: थैंक यू सो मच।

और कैलाश जी बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, सच में बहुत ही प्यारा गाया आपने सच में, तो ऐसा कुछ और गुनगुना के भेजिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपका गुनगुनाना। और यहाँ पे मैं बता दूं कि और भी फीडबैक है मेरे पास, जैसे कि राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। सर्वजीत जी भी है, इनका भी मैसेज है हमारे पास, और अशोक देशमुख जी हैं, और हमारे यानी कि रोहित जी हैं, और जितेंद्र जी हैं। अगली पसंद जो मैं प्ले करने वाला हूँ, और हाँ आरजे वंशिका जी भी जुड़ी हुई हैं, तो वेलकम है। और लेकिन मैं अगला गाना जो प्ले करने वाला हूँ वो मीना कुमारी जी का है, उनका जो डिमांड है बहुत ही प्यारा है, और वो है यार बदलना जाना। सच में इंजॉय कीजिए मौसम की तरह।

बिल्कुल यार बदलना जाना, क्योंकि अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है वो, जिसे लेके आए हैं हुकुम चंद जांगड़ जी। और बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया है, जैसे कि किशन पाल जी, गजानंद जी, प्रमोद कुमार जी, बिट्टू कुमार जी, नाजिम जी, आर्द्रवंशिका जी, जागीर खान जी, और मीना जी, जितेंद्र जी, और मीना इब्राहिम जी, और यहाँ रोहित कुमार जी, एमडी फाइव जलम जी, शमशाद हुसैन जी, नाहिद जी, अशोक देशमुख जी, और भी बहुत से दोस्त हैं। लेकिन अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ हुकुम चंद जांगड़ जी का, ये धरती या अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से, क्यों है ना।

0: को भी शामिल करता हूँ मैं।
1: अस्सलामुअलैकुम मन भाई जान, आज सभी दोस्तों ने शायर कहे हैं, हाँ? तो एक शायरी मेरे तरफ से भी है।
0: अच्छा अच्छा।
1: खूबसूरत है आंखें तेरी,
0: अच्छा,
1: रात को जागना छोड़ दे,
0: अच्छा,
1: खुद ब खुद नींद आ जाएगी तुझे,
0: अच्छा,
1: मुझे सोचना छोड़ दे।
0: ओह माय गॉड,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गाना बहुत मस्त चल रहा है, मजा आ रहा है प्रोग्राम में।
0: लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तेरी आंखें समुंदर से भी गहरी हैं, कि तेरी आंखें समुंदर से भी गहरी हैं, और तेरी बातें तो वो फूलों से भी सुनहरी हैं, और तू सामने हो तो ऐसा लगता है कि हर दुआ आज मेरी पूरी हो गई है। बिल्कुल। और वैसे मेरे पास और भी बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ नाम ही लूंगा कि किन किन दोस्तों ने फीडबैक दिया है। और जितेंद्र जी, जाकिर जी, अर्जय वंशिका जी, नाजिम जी, प्रमोद जी, एन किशन पाल जी, नाहिद जी, मीना कुमार जी, सर्वेश भगत जी, जितेंद्र और गजानन सोलकार जी, अशोक देशमुख जी, बिट्टू कुमार जी, मीना जी और बिट्टू कुमार जी, और यहाँ पे अशोक पाल जी, सभी दोस्तों ने गाने की तारीफ किया है, और सभी दोस्तों ने अपना अपना फीडबैक दिया है। सभी का थैंक यू सो मच। और बीच बीच में बहुत सारे कुछ फीडबैक दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ लिखते हैं हमारे बिट्टू कुमार जी के, बिन मंजिल के मुसाफिर को जुनून मिल गया, बिन मंजिल के मुसाफिर को जुनून मिल गया, और मुद्दत थी इन आवाजों को सुनने के लिए, आज वो आवाज, वो दिल को सुकून मिल गया। वाह वाह, क्या बात है भाई, आप क्या क्या लिखते हैं। ओके जी, और यहाँ पे ओके, चलिए अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये गाना है जिसे लेकर आई हुई है इन पूजा भास्कर जी। तो पूजा भास्कर जी, गाना प्ले कर दिया आपका, इंजॉय कीजिए।

जाकिर जी का एक मैसेज आया हुआ, लिखते हैं कि अपने दिल में तुम्हारे प्यार का दास्तान लिखी है, अपने दिल में तुम्हारे प्यार की दास्तान लिखी है और ना थोड़ा और ना थोड़ा बहुत यानी कि तमाम लिखी है, और कभी हमारे लिए भी दुआ कर लिया करो कि कभी हमारे लिए भी दुआ कर लिया करो क्योंकि अपने अपने हमने हर सांस में तुम्हारा नाम लिखी है।

और अभी समय हो चुका है 9:34। ओ माय गॉड, स्टूडियो की घड़ी में और समय कम है बहुत ज्यादा। और फरमाइशों की संख्या, ओ माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ, रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों ने फरमाइश भेजी है। और सभी की जो डिमांड है वो तो शामिल करना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक दो गाना में और प्ले करता हूँ जल्दी जल्दी। अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो आरजी सोनी जी का ले चलता हूँ, क्योंकि अब सागर से गहरा प्यार है, तो चलिए कहीं दूर निकल चलते हैं, वहीं पे आराम से प्यार करेंगे, है कि नहीं। इंजॉय कीजिए इस गाने को, आरजी सोनी जी के पसंद।

अरे जब मैं साथ रहूंगा तो कोई गम नहीं छुपाएगी ना, है कि नहीं? और गाना बहुत ही प्यारा लगा है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, आपको कैसा लगा है? और वैसे यहाँ पे बहुत से दोस्तों के फीडबैक आए हुए हैं, आरजे वंशिका जी का और प्रमोद कुमार जी का, किशन पाल जी का, अशोक देशमुख जी का, नाहिद अंसारी जी का, अशोक पाल जी का, मीना इब्राहिम जी का एंड यानी कुंता बेनी जी का, नाजिम जी का, गजान सरकार जी का, सभी ने गाने की तारीफ की है और आपको थैंक यू कहा है। लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो है बहुत ही प्यारा, क्योंकि अगर दूर जा रहे हैं लेकिन लोगों का पहरा मतलब हमेशा होता ही रहता है, हर जगह कोई ठीक से प्यार करने नहीं देता है ना, इसलिए वो गाना लेके आए हुए हमारे ये विष्णु जी, क्या नाम है, विष्णु चंद्र जी। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है इसलिए तो प्यार गहरा हुआ है, क्यों है ना, आपका क्या ख्याल है? इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: जाए।
1: और आज के यहाँ पे टॉप जो लीडर है वो टॉप 10, उसमें नाम है यानी कि प्रमोद कुमार जी का, नाहिद अंसारी जी का, बिट्टू कुमार जी का, गजानन जी का, एमडी फैज आलम जी का, अशोक देशमुख जी का, शमशाद हुसैन जी का, एमडी नाजिम जी का, मोहन नेवारी जी का और जितेंद्र सिंह जी का। देखता हूँ लकी ड्रॉ में किनका नाम आता है। और नाहिद जी लिखते हैं कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है इस जमाने का, इस जमाने का, और तब तब और भी प्यार गहरा हुआ है। जी बिल्कुल, और दुनिया की कोई दीवार इसे रोक नहीं सकती है, ये तो सिलसिला है जिस सदियों का चाहने वाला का। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कुंता जी लिखते हैं वाओ। और यहाँ पे एमडी फैज जी और गजानन सलोकार जी, मीना जी, अंजलि मोहाड़े जी और जाकिर खान जी, आरजे वंशिका जी और प्रमोद कुमार जी और किशन पाल जी, सभी दोस्तों ने गाने पर फीडबैक दिया है, सभी का थैंक यू सो मच। लेकिन अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ मैं बता देता हूँ, ये है हमारे शमशाद हुसैन जी का, मतलब शमशाद और बता दूं कि यानी इशाक हुसैन जी का। इशाक हुसैन जी गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

अच्छा एक हमारे अनिल यानी के कश्यप जी का एक मैसेज आया हुआ है, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में है। ये गाना मुझे अभी दिख रहा है यार, पहले क्यों नहीं दिखा, बहुत ही प्यारा गाना है और मैं तो अभी प्ले करूंगा। अनिल कश्यप जी।

और इसी बात में भले बादल को गरजने दो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नंदलाल यादव जी का गाना प्ले होना चाहिए, है कि नहीं? बादल को गरजने दो, एंजॉय कीजिए नंदलाल जी।

0: ओके, लेकिन जो अगला गाना है मैं प्ले करने वाला हूँ, हमारे वो चार दोस्तों की पसंद है, हमारे अशोक देशमुख जी और यानी कि सर्वेश भगत जी हैं, और आत्माराम पाटिल जी हैं, और एक साहब और भी हैं, नाम देखना पड़ेगा मुझे, अनिल मेहता जी। हाँ, अनिल मेहता जी यानी कि चारों की पसंद है। तो मैं पहले अशोक देशमुख जी का गाना प्ले, और आज तो अशोक देशमुख जी आज तो विनर भी बने हुए हैं, लेकिन पहले इनका ऑडियो सुनते हूँ।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल। तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है सनम हरजाई, और गाने का बोल है, दर्जी दर्जी नाप ले ले मेरा आंखें बंद करके। ये गीत सबसे पहले मैं आपको
0: थैंक यू
1: और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट करता हूँ, और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं लेकिन मैं फीडबैक शामिल नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि समय भी कम है बहुत ज़्यादा और गाने भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक दो गाना और प्ले कर रहा हूँ। लेकिन अगला मैं जो गाना प्ले करने वाला हूँ वो बिट्टू कुमार जी का है। एक सवाल मैं पूछूँ तुमसे, इंजॉय कीजिए बिट्टू कुमार जी। और इसके बाद से जो विनर हुए हैं उनका गाना मैं प्ले

0: वक्त हो तो ये सुना दीजिए।
1: अरे सुना दिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को, ये मेरा फेवरेट गानों में से एक है। आपने इतना प्यारा गुनगुनाया ना, इतना प्यारा गुनगुनाया कि सच में दिल में उतर गया ये। ओ माय गॉड, इतनी प्यारी आवाज है कि हम क्या ही बताएं। जितनी तारीफ करें कम है, और लगता है कि आपकी आवाज एक आरजे की है, मतलब आपको तो आरजे होना चाहिए।

बिल्कुल दिल ले लिया है, लेकिन बस मैं आखिरी गाना प्ले करके जाने वाला हूँ और वो गाना हमारे संदीप सुतार जी का है लश्कारा। इंजॉय कीजिए और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।